0: तू फेर आ गया, तेनू पिछली बार कही गल याद नहीं।
1: साडा देख देख हाल हाथ जोड़ी बैठा काल बंदे सारी ही रैकेट विच इड़े ने मौलके नू वांगू परे।

0: CJMR 1320.
1: मालूम है मैं शतरंज क्यों नहीं खेलता, क्योंकि दुश्मन को मैं सामने बिठाता नहीं और दोस्त के साथ चाल चलना मुझे आता नहीं।

दादे दा हौसला ते दादी दियां दुआवां ने सब दे पैर छू सका दुनिया ते जिन्निया भी मामा ने। मेरे लिए दुनिया गोरी आ भावे मैं आप पक्के रंग दा हां, मैं भैणा लई इज्जत ते मामा लई दुआवां मंगदा ते मामा लई खैर मंगदा हां।

मत पूछो क्या क्या होता है मोहब्बत के बाजार में, ये दिन भी हमने देखे हैं प्यार में, अपनों ने रखा।

0: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.
1: तेरे जैसा किसी ने कहीं आज तक कोई देखा नहीं, तुझको पा लेने की अब किसी हाथ में कोई रेखा नहीं। तेरी आंखों का साहिल ही तो मेरी मंजिल है, तू मिल न मिल। तेरे होठों का तिल मुस्तकिल दिल का कातिल है, तू मिल न मिल। सारी दुनिया इसी सोच में ही मगन है कि तू कौन है, शाहजादियों को भी तुझसे जलन है कि तू कौन है।

पास हो तुम, मेरा नाज हो तुम, रब से मांगी मेरी वो अरदास हो तुम। कैसे छोड़ जाऊं मैं साथ तुम्हारा, खुदा से भी ज्यादा खास हो तुम।

0: where cultures connect. CJMR 1320, the voice of the city.
1: दूध उबालोगे, दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

0: कुछ तस्वीरें ही आप लोगों को दिखाते हैं। ये आज दोपहर तकरीबन 2 बजे की तस्वीरें हैं। इस गाड़ी में 2 युवक सवार थे। गाड़ी के शीशे चारों तरफ से काले थे।
1: Your home for community. CJMR 1320.

जो हम कर रहे हैं, बस ये कहेंगे कि दुनिया को जीना सिखाने वाले तुम पे मर रहे हैं।

0: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.
1: गलत जगह दिल लगा बैठे, चांद को चाह बैठे, कौन होगा हम सब पागल, जमाने में दिया जलाने लगे थे, घर जला बैठे।